माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, योगराज को मैं ही सिखा दूं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: listen.
1: Another hit song.
2: Makes me want to dance.
1: Lotus FM.
3: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: कवाली नगमों का ये प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। मैं आपका मेहसबान हूँ और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं।
1: तस्लीम आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, एंड ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल कवाली लवर्स थ्रू आउट लोटस लैंड। यस, यू हैव ट्यून्ड इन टू मरियम बीबी खान विद दीनियात, एंड आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू आउट देयर स्पिरिचुअली एनरिच्ड आफ्टर लिसनिंग टू द वेरी एनलाइटनिंग प्रोग्राम दैट इज प्रेजेंटेड बाय मरियम बीबी खान। आइए, अब कवाली नगमों का प्रोग्राम है और लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। लिसन टू नात रसूल बाय ज़मन ज़की ताजी।

क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह. आई न्यू आवर लिसनर्स वुड लव दिस कलाम, नो डाउट. भाई साहब माशाल्लाह, हमारे फैसल आदम कलंदरी साहब इज डूइंग द मेरी जिग, इज एंजॉयिंग दिस कलाम, एंड व्हाई नॉट ऑल ऑफ अस आइडेंटिफाई विद दिस ट्यून एंड विद दिस कलाम. माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन अंदाज में हमारे फिरोज साहब ने इस कलाम को पेश की. ऑल्सो वी हैड स्माइली शेख ऑफ बेव्यू एंड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो हीपिंग अ लॉट ऑफ प्रेजेस आफ्टर लिसनिंग टू दिस कलाम. और साथ में अकी खान साहब, यस अकी खान of Johannesburg also. South me we have Majid Kader and Quraysha of Lanesha, ex-Durbanites, but of course they are these days residents in Lanesha, but they also tuned in and enjoying the music. And not forgetting our brother Abbas Sheikh of North Beach that's also tuned in. It seems, like I said, since it is the Urus of Baba Fariduddin Masood Shakar Ganjali Rahmal, I'm going to be playing one kalam first of Baba Fariduddin, and it's being sung by the Ajmeri.

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।